सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।

0: இளம்பு பிரேக் டைம்.
1: शिशु तथा बालबालिकालाई अत्याधिक गर्मीबाट जोगाउन

अभिनेको होटल एण्ड रेस्टुरेन्ट प्राइभेट लिमिटेड चौतारा सागर चुक गढी नगरपालिका 5 सिन्धुपाल्चोक आवर सर्भिसेस डिलक्स रुम